तेरे ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज़ तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो।

टूके तुझे भी कम ना रहे, जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यारा सा उसमें नहीं शक मुझे, but I want you to stay.

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

क्या खुद को खुदा मानते हो? क्या खुद को खुदा मानते हो? हमें मार तो दिया, पर एक शायर को मारने की सजा जानते हो?

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: 0439799-0439-799-760. शो दे दौरान तुहाडे SMS पढ़ के तुहाडे मनपसंद गाने तो मैं वजाऊंगी ही, पर उस तो इलावा भी बहुत सारिया खबरां मैं लेके आई हाँ जी। अज दिन है जी सोमवार, यानी कि साडे हफ्तावारी सैगमेंट पंजाबी डायरी दा, जिदे विच लवांगे जी पंजाब दी खबर सार। इस तो इलावा कैपिटल गेन टैक्स लागू होने वाला जी, पहला घर वेचना सही होएगा या गलत, ए सारी जानकारी लेके आवांगे जी साडी अगली रिपोर्ट विच।
2: की निवेश संपत्ति नूं 2027 तो पहला वेच देना चाहिदा है जां लंबे समय तक अपने कोल रखना बेहतर रहेगा।
1: इस तो इलावा तुहानूं सुनावांगे पंजाबी भाईचारा की कुछ कर रहा आस्ट्रेलिया विच। पंजाब तो आए सिमर गिल हुण पंजाबी भाईचारे दी आवाज़ बन चुके ने, ते ओ लड़ रहे ने जी MMA विच एज अ फाइटर।
3: देयर इज नॉट मेनी पंजाबी फाइटर्स राइट नाउ दैट आर लाइक एट द टॉप, यू नो, बट
1: जाणांगे उहनां दी ज़बानी, उहनां दी कहानी, ते नाल ही शुगर यानी कि जड़ी बीमारी है डायबिटीज़ दी, ओह भी बहुत वध रही है पंजाबी भाईचारे विच, ते ऑस्ट्रेलिया विच रहिंदे भाईचारे विच खास करके इस बीमारी नाल किद्दां निजिठिया जा सकदा है, सुणांगे जी साडी नवीं पॉडकास्ट सीरीज़ यानी कि पॉडकास्ट लड़ी सेहत संभाल दे राही।
4: तकरीबन मैं लगता सारे जणिआं नूं हो सकदी है, बिकॉज़ आपां बहुत पंजाबी हां, आपां बहुत प्यार ले हां, आपां बहुत मिठे हां। पर
1: इस तो इलावा नवे नकोर गाने तो मैं वजावांगी ही, पर जे तुसी भी सुनना होवे अपनी मनपसंद का कोई गाना, देना होवे किसी नूं कोई सुनेहा, है सारा कुछ कर सकते हो जी SMS करके। SMS करने लई नंबर है 0439799-767-0439-799-760। फिर जदों तक तुसी SMS भेज रहे हो, आओ रुख करते हैं SBS पंजाबी दे न्यूज़ रूम दा, ते लैने आ जी आसे पासे दी खबर सार।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: नमस्कार दोस्तों, SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. आज 15 जून 2026 की शाम, घड़ी में 5 बज चुके हैं और अब वक्त है दिन भर की खबरों और अहम अपडेट्स पर नजर डालने का. मैं हूं आपकी होस्ट भव्या पांडे और आज के शो की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के बुरुंजुरी और बुईबुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के सारे श्रोता जो आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं. मैं हूं भव्या और अगले एक घंटे तक हमारा साथ बना रहेगा. सुनेंगे आज की खबरें, भारत से समाचार और फीफा विश्व कप से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स. उसके बाद करेंगे उन चुनौतियों की बात जो आज ऑस्ट्रेलियाई समाज के सामने

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
3: And staring at a not so motivational poster on my wall.
2: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
4: I'm on top of the world!
2: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
5: आस्ती को हम एक जरिया बना सकते हैं कल्चर को समझने के लिए. अंत में हम जानेंगे कि पालतू जानवर जो होते हैं उनकी जो देखभाल है वो हम ऑस्ट्रेलिया में रहकर किस तरह से कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के खास अंश में. तो ये सब कुछ होगा आज के कार्यक्रम में और इस पूरे घंटे के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें. संदेश अपने आप मुझे भेजते रहें. नंबर है 0439799767 और आज का सवाल आपको बता देती हूँ. तो आज हम पेट्स से संबंधित एक अंश सुनने वाले हैं. ऐसे में जानना चाहती हूँ क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है, यानी क्या आप एक पेट लवर हैं और आपने कभी कोई पेट रखा हो, या फिर अगर नहीं भी है तो मैं जानना चाहती हूँ कि यदि आपको मौका मिलता है तो आप कौन से जानवर को एक पेट की तरह अपने साथ रखना चाहेंगे. नंबर है 0439799767. इसके अलावा बहुत सारे गाने आपके लिए आज लेकर आने वाली हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें. लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं आज का न्यूज फ्लैश. प्रस्तुत है 15 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ. ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इसराइल के साथ विभिन्न मोर्चों पर जारी संघर्ष को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी. ईरान ने उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि आने वाले 60 दिनों के दौरान दोनों पक्षों के बीच वार्ताएं जारी रहेंगी. हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए सभी पक्षों को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी शुल्क के समुद्री यातायात के लिए खोलने तथा अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की अनुमति दे दी गई है. अमरीका और ईरान के बीच औपचारिक शांति समझौते पर इस शुक्रवार स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को भी राहत मिल सकती है. वहीं इस शांति समझौते का स्वागत करते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सत्यापित कदम उठाने की स्थिति में वे संबंधित प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं. साथ ही कतर और जापान समेत कई देशों ने भी इस समझौते का स्वागत किया है, जबकि कतर ने समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया. वहीं बात करें सिडनी की, तो सिडनी के कूजी बीच पर हुए शार्क हमले के बाद एक बार फिर शार्क नियंत्रण उपायों और शार्क किलिंग को लेकर बहस तेज हो गई है. शनिवार सुबह समुद्र तट पर तैर रही लगभग 30 वर्षीय एक महिला पर शार्क ने हमला कर दिया जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पूर्वी सिडनी के कई समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विस्तृत बातचीत की है. ये बातचीत फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, जहां यूक्रेन में जारी युद्ध प्रमुख मुद्दों में शामिल है. वहीं स्विट्जरलैंड में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं. शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल किया. बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS में प्रस्तावित बदलावों को लेकर उठ रही चिंताओं को स्वीकार किया है. सीनेट जांच समिति को 2 हफ्ते के भीतर 4,000 से अधिक सार्वजनिक सुझाव प्राप्त हुए हैं. वहीं आलोचकों का कहना है कि लागत कम करने के उपायों से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में लोग योजना से बाहर हो सकते हैं. हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि वे NDIS के

प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि सरकार प्रवासन संख्या कम करना चाहती है, लेकिन साथ ही देश में कौशल यानी स्किल की कमी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार आने वाले वर्षों में फॉरेन इमिग्रेशन को प्रतिवर्ष 2,25,000 तक सीमित करने का लक्ष्य रख रही है। बात करें भारत की, तो धर्मशाला में खेले गए वर्षा प्रभावित एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने लक्ष्य 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमने सुना आज का न्यूज़ फ्लैश, और आपको बता दूं कि इस न्यूज़ फ्लैश को आप एक बार फिर से SBS हिंदी की जो वेबसाइट है वहाँ पर सुन सकते हैं, यदि अपने आज की जो खबरें हैं वो मिस कर दी हों। तो सुनिए फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का संक्षिप्त अपडेट। आप फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में SBS और SBS ऑन डिमांड पर भी देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं।

0: जर्मनी की शानदार जीत और जापान की दमदार वापसी के साथ विश्व कप का आगाज। नमस्कार, मैं हूँ वृषाली जैन और ये है फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का संक्षिप्त अपडेट। जर्मनी ने अपने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए ह्यूस्टन स्टेडियम में ग्रुप ई के मुकाबले में पहली बार विश्व कप खेल रही कुरासाओ को 7-1 से करारी शिकस्त दी। फेलिक्स मेचा ने मैच के सिर्फ 6 मिनट के भीतर गोल दागकर 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी को बढ़त दिला दी। ये अब तक टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल है। हालांकि विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश कुरासाओ तब सुर्खियों में आ गया जब लिवानो कॉमेनेंसिया ने 21वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। हालांकि इसके बाद जर्मनी ने मैच पर पूरा नियंत्रण बना लिया और 6 और गोल दागते हुए एक आसान जीत दर्ज की। उधर ग्रुप एफ का आगाज डलास में जापान और नेदरलैंड्स के बीच 2-2 की बराबरी के रोमांचक मैच के साथ हुआ। नेदरलैंड्स ने कप्तान वर्जिल वैन डाइक और क्रिसेंसियो समवेल के गोलों की बदौलत 2 बार बढ़त हासिल की, लेकिन जापान ने दोनों बार शानदार वापसी की। पहले केतो नाकामुरा ने स्कोर बराबर किया, फिर मैच के 88वें मिनट में डाइची कमादा ने हेडर गोल दागकर जापान को 2-2 की बराबरी दिला दी और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण 1 अंक सुनिश्चित किया। उधर फिलाडेल्फिया में कोट डी आइवो और इक्वाडोर पहली बार विश्व कप में आमने सामने थे। मैच के 90वें मिनट में अमादा डियालो ने नाटकीय विजयी गोल दागकर कोट डी आइवो को 1-0 की जीत दिला दी और टीम को अहम 3 अंक दिलाए। वहीं मेक्सिको के मोंटेरे स्टेडियम में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। जापान और नीदरलैंड्स के बीच ड्रॉ के बाद अब स्वीडन ग्रुप एफ में अकेले शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। वहीं सोकिरोस तुर्की पर 2-0 की शानदार जीत के बाद पहली बार अपने बेस कैंप लौट आए हैं। इस जीत ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप डी में मजबूत स्थिति पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब टीम का ध्यान 19 जून को होने वाले अपने अगले मुकाबले पर है, जहां उसका सामना मेजबान अमेरिका से होगा। कोच टोनी पॉपोविच की टीम फिलहाल रिकवरी और अगले मैच की तैयारियों पर ध्यान दे रही है।
1: Playing the host nation, so another special occasion for us, and we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover because our young boys would never have experienced something like this. So we need to enjoy it, recover from it, and see how they are for the next match.
0: आगे बात करें पांचवें दिन की, तो स्पेन अपने अभियान की शुरुआत विश्व कप में पहली बार खेल रही केप वर्डे के खिलाफ करेगा, जबकि ग्रुप जी में बेल्जियम का सामना इजिप्ट से होगा। इसके बाद ग्रुप एच में उरुग्वे और सऊदी अरेबिया आमने सामने होंगे, जबकि ईरान की भिड़ंत न्यूजीलैंड से होगी। सभी टीमें नॉकआउट चरण की दौड़ में शुरुआती अहम अंक हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आप सुन रहे थे फीफा विश्व कप 2026 के चौथे दिन का डेली अपडेट। मैं हूँ वृषाली जैन। फीफा विश्व कप 2026 का हर पल देखें लाइव और मुफ्त SBS और SBS ऑन डिमांड पर।
2: तो दोस्तों, फीफा विश्व कप के चौथे दिन का ये अपडेट आप तक लेकर आई थी वृषाली जैन। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौटकर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर के साथ। सुनते रहें SBS हिंदी।
3: Shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
4: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: SBS Audio.
6: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
7: यहाँ जाओ दादिया. चुनबे हाल में.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
12: Far from the partisan politics.
13: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio. ऐप डाउनलोड करें या फिर
14: sbs.com.au/audio.
2: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ. आपको बता दूं कि वक्त हो रहा है 5:14, और यदि आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ ज़रा देरी से जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं. आपको बता दूं कि आप हमारे सभी अंश और कार्यक्रमों को SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं. इसके अलावा अब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं, तो यदि आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाएं और फॉलो कर लें. तो ब्रेक से पहले हमने नज़र डाली थी आज की खबरों पर और हमने सुना था कि फीफा विश्व कप के चौथे दिन में क्या क्या हुआ है, और अब वक्त आ चला है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का. तो ऑनलाइन गलत जानकारी, नफरत भरी भाषा, एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया और प्रवासियों के प्रति बढ़ती नकारात्मक सोच जैसी चुनौतियां आज भी ऑस्ट्रेलियाई समाज का सामना कर रही हैं. ऑस्ट्रेलियन रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर, नस्लीय भेदभाव आयुक्त गिरिधरन सिवारमन इन सभी मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हुए बताते हैं बहुत सारी बातें, जो कि हम आने वाले अंश में सुनेंगे. और ये अंश आप तक लेकर आ रही हैं प्रीति जब्बल.
15: ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे सफल मल्टीकल्चरल देशों में गिना जाता है, और हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में लोग यहां बसने आते हैं. लेकिन इसके बावजूद वर्कप्लेस, यूनिवर्सिटीज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रेसिज्म की घटनाएं आज भी सामने आती रहती हैं. तो आखिर रेसिज्म से निपटने और ये सुनिश्चित करने के मामले में कि हर व्यक्ति खुद को इस समाज का हिस्सा महसूस करे, ऑस्ट्रेलिया कितना सफल रहा है, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर श्री गिरिधरन सिवरमन.
16: वेलकम टू SBS हिंदी कमिश्नर, अ प्लेजर टू हैव यू विद अस.
17: एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी जॉइनिंग यू.
16: Thank you. Let's jump straight into it. It's been 2 years since you took up the role. How has the experience matched your expectations?
17: Yeah, I clocked over 2 years on the 4th of March. So I came in at a really febrile time. Yes. I think that was due to a combination of events. Firstly, the failed voice referendum, which really mainstreamed racism towards First Peoples. Then the war in Gaza, which saw a surge in anti-Semitism, anti-Palestinian racism, Islamophobia. And then, of course, more recently, in the last year, we've seen a rise in racism towards people of Indian origin. We've seen Indians be singled out in anti-immigration rallies. Personally, I've been sent videos of racist violence towards people of Indian origin. We've all probably heard about the racist backlash to the proposal to have a Little India in Melbourne. I just think, unfortunately, that it's a really challenging time. But I've enjoyed the job because I've met incredible people, incredible communities and community leaders who give me a lot of strength, and who themselves display so much resistance and strength and hope. And they are why I remain optimistic, because if we can provide communities a voice, if I can provide communities a voice, I think that we will be a better society for it.
16: Thank you. And we will definitely be discussing the Indian diaspora. But before that, I'd love to know that one of the highlights of your tenure was the release of the National Anti-Racism Framework, but it is yet to get government commitment and funding. What impact has that delay had, and what message does it send to communities affected by racism?
17: Yeah, it's a bad message. For those that don't know, the National Anti-Racism Framework is a really significant piece of work. It came off the back of 2.5 years of work, consultation with 300 community organisations across Australia, consultation with 1,500 individuals who are affected by racism, significant pieces of research in health, education, media and the arts. And it was from the consultation and research that we developed this national roadmap for tackling all forms of racism in Australia. And we had particular areas of focus coming from the consultations, and in particular people identified workplaces, education, health, media and the arts, the justice system and data as critical areas where we need reform. And what our research also showed is that to date, anti-racism approaches by government, all levels of government, are ad hoc, piecemeal. There are parts of government that don't even want to use the word racism, but rather use euphemisms like social cohesion or harmony. And I often say you need to name the beast or slay it. I'm not sure exactly what social cohesion means, but if it means we all want to get along, that's great. I want that. We're not going to get along by pretending racism doesn't exist. And when the shocking anti-Semitic attack and massacre occurred in Bondi late last year, I said publicly, I wish the government had already endorsed and implemented the National Anti-Racism Framework. After this terrible attack, the task force that the framework calls for could have been convened straight away, and we could have done work to stop something like that from ever happening again. And you don't know if you can stop someone on that journey of hate to what happened that day, but I know that those two men probably went to school, at least the younger one, for sure, in Australia, and both probably had a job. And those are two areas that perhaps, had the framework been implemented, we could have diverted them on that journey of hate so that it didn't end up where it ended up. And I think the problem is that racism just keeps manifesting. The target keeps changing, but the problem remains. So you need a comprehensive solution like we've tabled with the National Anti-Racism Framework. And as you point out, it hasn't been endorsed by any level of government, let alone any funding being made to implement the recommendations.
16: A recent poll has found that One Nation's support has surged, overtaking Labour for the first time. Their primary vote support is now 31% as opposed to 28%, which is where Labour's sitting at. What do you think is driving that shift in voters' sentiments, and what does it mean for the future of multiculturalism in Australia?
17: Yeah, so I think that we have seen a shift in politics. We've seen certain parties that have really taken a hard line on immigration. And there's nothing wrong with immigration being debated as a policy issue. It's clearly an important policy issue and we should discuss it, absolutely. The problem arises when immigrants, and certain immigrants, are targeted or dehumanized or blamed for problems. And that is something we've seen more and more of. Earlier on, we talked about the example of migrants from India being singled out in anti-immigration rallies. So they're being targeted, they're being dehumanized, they're being scapegoated. I've seen shocking racist videos and memes on social media targeting the Indian community. And that's, I think, the problem. The problem is that we are dehumanizing people, and political parties are doing that. They don't do it necessarily directly, but it's implicit in some of the rhetoric that they use, where they talk about talk negatively about certain cohorts of people that are coming here, or talk about Australian values in a very vague way, or in a way that implicitly says that some people belong here more than others. And I think the further problem is that it also avoids the obligation to come up with real solutions, complicated solutions for complex problems like housing policy or affordability and things like that. And it's also really contrary to our actual history. That is, Australia has a really rich history. We had immigrants from what is now India from well before 1900, really from the 1830s onwards. Islam was on our shores well before Christianity through the Makassan traders from Indonesia. So we have this really rich history of migration, but unfortunately an equally rich history of racism, which culminated in the White Australia policy. And I worry that some of the rhetoric is bringing up the tropes and the stereotypes and the ideas of superiority that we've had in the past. And the final thing I'll say is words have consequences. So when a political leader says something, that those words can have consequences. There can be a direct through line from racism in political rhetoric to racism on our streets. So I think leaders have an obligation to be really careful about what they say.
15: ऑस्ट्रेलिया के रेस डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर गिरिधरन सिवरमन के साथ मेरी बातचीत का ये पहला हिस्सा यहीं समाप्त होता है। इस चर्चा का अगला भाग हम अपने अगले एपिसोड में लेकर आएंगे, इसलिए SBS हिंदी के साथ जुड़े रहिए। अगर आप ये पूरा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS हिंदी के फेसबुक पेज पर विजिट करें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूँ प्रीति जब्बल।
2: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि ऑस्ट्रेलिया के जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कमिश्नर हैं उनको SBS हिंदी से प्रीति जब्बल ने हाल ही में इंटरव्यू किया था और इसका पहला भाग हम आप तक लेकर आए और दूसरा भाग हम आपको कल सुनाएंगे। चलिए, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं कि आपके जो संदेश हैं वो मेरे पास पहुँच रहे हैं। अकबर मजारी लिख रहे हैं सिडनी से, लव योर शो, और आज मैंने पूछा था कि आपके पास अगर कोई पेट है तो उसके बारे में बताएं, और अगर नहीं है तो बताएं कि कौन से जानवर को आप एज अ पेट अपने पास रखना चाहेंगे। तो इन्होंने लिखा है, आई वुड लव टू कीप कुआला एज अ पेट। तो ऑस्ट्रेलिया की जो शान कहा जाता है कुआला, उसको ये एज अ पेट अपने पास रखना चाहेंगे। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कुछ और भी संदेश मेरे पास आए हैं जो कि पढ़ दूंगी। पीयूष जी का संदेश आया है, अपनी हाजिरी उन्होंने लगा दी है, और बाकी के संदेश भी पढ़ दूंगी, लेकिन उससे पहले ये बढ़िया सा गाना सुनें।

प्याले में। तो दोस्तों पीयूष जी का संदेश हमें आया है, लिखते हैं, यू शुड कवर अ सेगमेंट ऑन द ओनली इंडियन ऑफिशियल फोटोग्राफर अ वुमन हु हैज गॉन थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस एंड इज कवरिंग फीफा वर्ल्ड कप। हर नेम इज गीतिका तालुकदार। तो आपको बता दूं पीयूष जी कि उनके साथ एक खास साक्षात्कार हाल ही में नताशा कॉल ने किया हुआ है, जो आपको हमारी वेबसाइट यानी sbs.com.au/hindi पर मिल जाएगा। तो आप जरूर जाएं और सुनकर बताएं कि ये अंश आपको कैसा लगा।

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
4: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
5: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
6: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो इस आने वाले अंश में हम अभिनेता विक्रांत नारायण से बातचीत करेंगे, जो हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस द मूवी में नजर आने वाले हैं। वे बताते हैं कि कैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ लैंग्वेज के छात्रों की ऑस्ट्रेलियाई यात्रा अचानक मोड़ लेती है और वे सिडनी या मेलबर्न की जगह रूरल डब्बू में पहुँच जाते हैं। विक्रांत नारायण के अनुसार, फिल्म हास्य और सांस्कृतिक गलतफहमियों यानी मिसकंसेप्शंस के जरिए पहचान, भाषा और असली ऑस्ट्रेलिया की समझ को दिखाती है। वे ये सब कुछ साझा करते हैं इस बातचीत में, और आइए ये अंश अब आपको सुनाती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग इतनी अलग तरह से क्यों बात करते हैं? उनके मजेदार स्लैंग्स, अनोखी संस्कृति और रोजमर्रा की आदतें दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। इसी पर बनाई गई थी सीरीज हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस, जो कि अब जल्द ही एक फिल्म में तब्दील होने वाली है। आपको बता दूं कि इस 8 भागों की कॉमेडी सीरीज में भारत के एक काल्पनिक भाषा महाविश्वविद्यालय के छात्रों की नज़र से ऑस्ट्रेलियाई कल्चर को समझने की कोशिश की गई। अब मजेदार किरदारों, दिलचस्प घटनाओं और ह्यूमर के माध्यम से इस फिल्म में दिखाया गया है कि अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे को कैसे देखती और समझती हैं। तो आइए बात करते हैं इस फिल्म के एक्टर विक्रांत नरेन के साथ। विक्रांत जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो एक्टिंग की जर्नी है, जो सफर है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी?
7: शुरुआत तो भारत में ही हुई थी, जब मैं काम भी करता था वहाँ पे। मतलब कॉर्पोरेट जॉब में था, मार्केटिंग सेल्स। उसके बाद मैंने खुद अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे म्यूचुअल फंड है, उसको बेचा। और उससे पहले शौक तो जब से था, लेकिन मैं थिएटर करता था आउटसाइड ऑफिस आवर्स, मतलब काम खत्म होने के बाद। हिंदी थिएटर किया मैंने 3-4 साल, और एक्टिंग का कोर्स भी किया पार्ट टाइम श्रीराम सेंटर से। के बाद जब मैंने माइग्रेट किया ऑस्ट्रेलिया 2000, तो 10 साल तक मैंने कोई एक्टिंग नहीं की। मैं सुपरमार्केट, मतलब कोल सुपरमार्केट में काम करता था मैं, तो फिर वो होता है ना पुराना जिज्ञासा वो जागृत हुआ एक दिन, तो फिर मैंने स्टूडेंट फिल्म्स करना चालू कर दिया जस्ट टू गेट मतलब ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरे को बस वो एक एजेंट ने फिर आगे बढ़ाया काम, फिर जाके ये प्रोजेक्ट मिला, फिर ऐसा शुरू हुआ मेरा जर्नी।
6: इस फिल्म के शूटिंग के दौरान ऐसा कोई ऑस्ट्रेलियाई पहलू आपको पता चला हो?
7: अब ऐसा है कि ये मतलब हर एक पहलू ही मजेदार था, कोई एक पहलू पे नहीं बात सकते, क्योंकि ये स्क्रिप्ट में ये इतना फनी था, इसको पढ़ के ही हंसी आ रही थी, और इसको डेड पैन स्टाइल से बोलना था, मतलब कि, और मैं जब तक काफी समय व्यतीत कर चुका था तो मैं जान के भी अनजान बन रहा था, तो उसका एक पहलू नहीं है, वो रोज ही ऐसे होता था, उसको को एक्टर से करना, फिर किसी बात में हंसी आ जाना, और ऐसे ऐसे जगह गया जो मैं कभी नहीं गया जहाँ पे शूटिंग था, तो बेसिकली इसको करना ही एक बहुत बड़ा मेरे लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था, मतलब कि उसको स्ट्रेट फेस डेड पैन करके कॉमेडी स्टाइल में बोलना स्क्रिप्ट को, जो मैं जानता हूँ ऑस्ट्रेलियन कल्चर, क्योंकि मैंने इतना टाइम लिया है, तो वही मेरे लिए बहुत ही अद्भुत चीज था।
6: जी, आपने बात की अभी कॉमेडी की, तो पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कॉमेडी या ह्यूमर के माध्यम से कल्चर को दिखाना कितना प्रभावी होता है?
7: देखिए भावी जी, ये बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि हम आते हैं किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। अभी ये पहले इसका वेब सीरीज आया था 10 साल पहले, हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियन, अब ये फिल्म आया है, उसी का बड़ा रूप है। अब ऐसा है कि हम एक कोई प्री कंसीव नोशन से जाते हैं, और हम लोग हम भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, वो भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं। इसका हिंदी का शब्द नहीं मिला मुझे, इसको उसका बायस कह सकते हैं, ऑब्लिक स्टीरियोटाइपिंग। तो ऐसा जो प्रोजेक्ट है, जो मतलब ये हास्य फिल्म है, जो ये इसको तोड़ता है, तो ये दोनों साइड को जोड़ता है, ये दोनों साइड के रिश्तों को ये मजबूत करता है, क्योंकि ये स्टीरियोटाइपिंग बायस को तोड़ता है, और एक तरह से एक वार्तालाप, एक तरह से डिस्कशन करता है, ये शुरुआत जो अच्छा है, मतलब कि ये इसका मेन मकसद है एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये सिचुएशनल कॉमेडी है ऑन असिमिलेशन, जब आदमी जाता है तो दूसरा कल्चर को जैसे समझता है, उस पे फनी चीजें, वो जो इंसिडेंट घटती है उसी के ऊपर है ये, तो ये यूनिवर्सल है, लेकिन कई जोक है जो वो समझ में नहीं आएंगे जो यहाँ रहता है उसी को, बट कई जोक यूनिवर्सल है, क्योंकि एब्सर्डिटी और सिचुएशनल कॉमेडी है ऑन मतलब कि असिमिलेशन इनटू अंडरस्टैंडिंग अदर कल्चर, तो ये कई जगह में यूनिवर्सल भी है, कई जगह पे ये सिर्फ जैसे यहाँ के लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, और धीरे धीरे भारत में जब भी रिलीज होगा वहां पे आएगा, लेकिन अब ये मेरा कहना है।
6: जी अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि ये जो शो है, ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में कौन सी गलत फहमियों या मिसकंसेप्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको दूर करता है?
7: अब ऐसा है कि इनके कुछ अंग्रेजी बोलने का ढंग, जब आदमी यहाँ आता है तो वो समझ में नहीं आता, इनका स्लैंग, इनकी आइडियम्स, और ये तो जैसे इनका एक जैसे मेरा फेलो एक्टर को बोला किसी ने कि हाउ आर यू गोइंग, तो उसने बोला आई एम गोइंग बाय ट्रेन, तो अंग्रेजी उसकी बहुत अच्छा, वो इंजीनियर है, तो ये जो है ना, ये है तो वही अंग्रेजी, बट इसका बोलने का ढंग थोड़ा अलग है, तो हम ये समझने के लिए हम कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकली जब हम जैसे ये अनुभव करते हैं तो वो थोड़ा सा फनी हो जाता है, या तो उसको समझ में नहीं आता या वो हम उनको नहीं समझते, तो ये दोनों तरफ का ये जो एडजस्टमेंट लेना देना है, बेसिकली लेना देना के ऊपर है, कुछ हम दिया कोई हमें लेना है, ये जो प्रॉब्लम आती है ये उसके ऊपर है, और ऐसे ये एक मैंने शब्द बोला, ऐसे मेरे साथ भी कहीं हुआ, गुड डे मेट, जैसे मैं रस्ते में जा रहा हूँ तो बाकी जगह हाउ आर यू बोलते हैं या गुड डे मेट बोलते हैं, और कोई अगर टेलीफोन में किसी कस्टमर सर्विस कोई बोले वो भी ऐसा स्लैंग यूज कर सकता है। तो ये चीज जो नया कोई आता है तो उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है ये कल्चर, ये इस तरह का बोलचाल को समझने में। तो कुछ तो इस पे है, बट कई चीज इस पे ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री और इनका बाकी परंपरा को भी दिखाता है, तो ये काफी नॉलेजेबल भी है। सिर्फ इनका अंग्रेजी के ऊपर नहीं है, इसमें इनका पूरा हिस्ट्री जो है, क्योंकि मुझे ऐसे किसी ने बोला ये 70-80 का सेटिंग है, लेकिन इसके थॉट्स और इसका बाकी चीजें मॉडर्न है। तो हम पुराना स्टीरियोटाइप को दिखा रहे हैं और सेटिंग इसका मॉडर्न है। तो ये एक्चुअली आई वुड से कि ये ऑलराउंड कॉमेडी है, सिर्फ इनका बोल चाल और ढंग पे नहीं है, ये बाकी चीज भी कवर करता है, इनका हिस्ट्री और इनका पूरा पुराना तरीके का जीने का ढंग और मॉडर्न, क्योंकि ये रूरल ऑस्ट्रेलिया पे ज्यादा है। तो एक्चुअल आप अगर इनका समझे इनका कल्चर, तो आपको छोटा टाउन में जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आउटबैक कहते हैं, आउटबैक पे वहाँ, क्योंकि ये शूटिंग ज्यादातर उधर ही हुआ है, क्योंकि ये मॉडर्न जो ऑस्ट्रेलिया है ये थोड़ा पॉलिटिकल करेक्टर्स पे आ गया है पीसी, तो यहाँ पे आप ज्यादा नहीं समझोगे ये जो, और वहां पे अभी भी मुंह पे बात करते हैं, इन योर फेस। तो वहां पे ये जो नए हैं सेटलर वो ज्यादा समझेंगे। तो ये जब भी ये रोड ट्रिप है गोइंग थ्रू रूरल टाउन आउटबैक और उसके ऊपर, और यही पे कॉमेडी का प्रभाव ज्यादा हुआ है।
8: बहुत ही मजेदार विषय है, और हाँ। आपसे आज बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।
7: हाउ टू टॉक ऑस्ट्रेलियंस द मूवी,
8: आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
7: थैंक यू भावे।
9: SBS न्यूज के लिए इस अंश को आप सबके सामने SBS हिंदी में लेकर आई भव्या पांडे।
6: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, ये अंश पसंद आया होगा, और यदि आपको इस तरह के कंटेंट में ज़रा भी दिलचस्पी है तो ये मूवी ज़रूर देखें और बताएं मुझे कि कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति। चलिए, वैसे तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन सोच रही हूँ कि जाने से पहले आपको एक गाना सुना दूँ।

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है।
7: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो पालतू जानवर परिवार की कीमती सदस्य होते हैं जो खुशी और साथ देते हैं, तो उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है? ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में इसी विषय पर सुनिए जानकारी जो कि आप तक लेकर आ रही हैं अनीता बरार।
8: आप सुन रहे हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन, SBS ऑडियो पॉडकास्ट जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रहने के तरीके में मदद करता है। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसे नियमित तौर पर पशुओं के डॉक्टर के पास ले जाना आपके पालतू पशु को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस एपिसोड में आप जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जानवरों के क्लिनिक में जाने पर क्या होता है, आप रूटीन चेकअप, इमरजेंसी केयर और अपने अपॉइंटमेंट की तैयारी कैसे करें। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। जिम्मेदार पालतू पशु के मालिक यानी पेट ओनर होने का अर्थ है कि अपने पशु को खाना देना, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग और सुरक्षित घर और नियमित वेटरनरी केयर देना ताकि वो स्वस्थ रहें। ऑस्ट्रेलिया के लगभग 3/4 घरों में पालतू पशु होता है, इसलिए वे परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि वीरा सेटो का 13 साल का लैब्राडोर चौके।
9: He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
8: जानवरों की डॉक्टर डॉक्टर डायना बारकर बताती हैं कि पालतू जानवर अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपाने में बहुत माहिर होते हैं।
10: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
8: Preventing care में vaccination, parasite prevention और dental care शामिल है ताकि बीमारियों को होने से पहले ही रोका जा सके। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में भी बीमारी के किसी भी लक्षण का जल्द पता लगने में मदद मिलती है। वेटरनरी डॉक्टर रायन ओंग कहते हैं कि वेटरनरी क्लिनिक जाने से पहले आप कुछ चीजें कर सकते हैं। सभी बातों को लिख लें क्योंकि भूल जाना संभव होता है।
11: it's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
12: और जैसा कि सीटू बताती हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते समय अपने विजिट का कारण बताएं और क्लिनिक को अपने पालतू जानवर की किसी भी खास जरूरत के बारे में भी बताएं.
9: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, they can be very helpful to make sure our pet has as positive an experience as possible at the vet.
12: Dr. Barker का कहना है कि अलग-अलग प्रजातियों को अनजान माहौल से निपटने में मदद करने के तरीके हो सकते हैं.
10: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
12: Dr. Barker का कहना है कि एक बार जब आप consultation room में पहुंच जाते हैं, तो veterinary doctor आपके पालतू जानवर का physical examination करते हुए सवाल पूछेंगे। और आपको अपने पालतू जानवर की हेल्थ के बारे में कोई भी चिंता हो उसे बताना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके साथ इलाज के ऑप्शन पर बात कर सकें। कंसल्टेशन के बाद जानवरों के डॉक्टर कोई भी दवा देंगे जिसे आप रिसेप्शन से ले सकते हैं और आप फीस आदि भी दे सकते हैं। डॉक्टर रायन ओंग बताते हैं कि अगर आपका पालतू जानवर अचानक से बीमार हो जाता है या घायल हो जाता है तो कई क्षेत्रों में खास इक्विपमेंट वाले जानवरों के इमरजेंसी सेंटर भी मौजूद हैं।
11: Might also include things like accidents or injuries or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic. And in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
12: अगर आपको अपने पालतू जानवर के बारे में कोई भी अर्जेंट चिंता है, तो डॉक्टर रोंग सलाह देते हैं कि सलाह के लिए वेटरनरी इमरजेंसी सेंटर पर फोन करें.
11: Give them a call before heading in. So.
7: तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यानी भव्या पांडे के साथ SBS हिंदी पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उन सभी श्रोताओं को भी शुक्रिया जिन्होंने अपने संदेश आज के कार्यक्रम में मुझ तक भेजे। जाने से पहले ये प्यारा सा गाना सुने और फिर हमारी मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नई बातों के साथ SBS हिंदी पर।

0: SBS South Asian, your news from here and hits from home.
1: प्यार की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुनें गूंजने लगती हैं।

करे वीडियो ट्रेंड तेरा, लौंडा बनना चाहे बेबी बेस्ट फ्रेंड तेरा, जैसे कमर हिलाए कभी दाएं कभी बाएं, तेरा स्वैग और नखरा भी एंड तेरा। अच्छा सुन, तेरी बातें टू मच है, पर लौंडे का स्वैग देसी टच है, तेरे यार का नाम बोलो शहर में, मम्मी कसम बेबी।

0: आपको क्या लगा हम भूल गए?
1: हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम हवा हवा।

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: Wall to Wall Music, playing now on SBS South Asian.

ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे।

लिए से लफड़ा करे हैं, प्यार कम ज्यादा झगड़ा करे हैं, ऐसे तड़पाए क्यों, ईगो तो दिखाए क्यों, मछले है जैसे कुनकन की मछली, स्टाइल

0: Your music playlist sorted. SBS South Asian.
1: अरे अल्फा बीटा गामा थीटा, तेरे भाई ने सबको पीटा
2: भगा भगा के।
1: आपके लिए आए स्पेशली।
2: हाजी हाजी।
1: कर्मा और रफ्तार, ये गाना उनके लिए है जो मेरे साथ स्कूल में थे।
2: कैसे भाइयों?
1: और उनके लिए जो अभी भी स्कूल में है।
2: बड़ो और बड़ो।